0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 李啊啊啊！咦咦，
1: 喂，hear there，ती दुई जनी कहाँ की हुन? hear ता hear जाऊँ।
0: ए कोई काठोड़ बन्नू क्या ढूँढना आनु सही?
1: ए बिचारी मज़ो वै

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

बुलबुल एउटा ईरानी चरा। बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति। बुलबुल बुलबुल।

0: पूरा को प्रमा सौ न कार्य अठासी हजार शहर का प्रमा सुताजी महाराज जी आगे कर दिन वो तीसरी कारण ने साम सदा शिव जी को पूजन करनु शिवल लिंग परम तत्व माने को इस मध्य में मोक्ष कामना करें भगवान को कथा प्रवचन कर कथा सुन श्रवण कर मनन कीर्तन कर केवल शिवलिंग महा कालेश्वर को चिंतन कर पशुपतिनाथ को चिंतन करके शिव पुराण को दशम संहिता को कथा प्रवचन है नमस्कार करते हुए
1: जय जय हो
0: परमात्मा शिवलिंग को स्थापना कसरी करने प्रणव मंत्र को जप विधि करते प्रादुर्भाव कर अनेक राम्रो शुद्ध क्षेत्र को गंगा जी को क्षेत्र को तलाव को क्षेत्र को राम्रो माटो लेकर आएर साम सदा शिव जी को लिंग बना लिंग प्रकार अनेक प्रकार का विधि विधान मध्य में शिवलिंग पीठिका बनाएर राख्नु पर्छ शिवलिंग को पीठिका मण्डलाकार बनाए हुने चतुष्कोण र त्रिकोण त्यसै प्रकारले खटवांग खाटको खुट्टा आकार लुसी जस्तो तल माथि मोटो बीच में मसिनो भएको बनाए पनि विशेष फलदायक हुने भनेर